0: अरे जी क्या तू खाना लग पाए हो यार।
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: सोना चाहिदा,
4: परोसा चाहिदा,
3: क्वालिटी ते बाई बैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
5: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
6: सूरज देवता
5: की मतलब?
6: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
5: मैनू नहीं पता, आपां भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
6: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-06-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
3: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा।

मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षों के तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक आज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 04332802552 ते

0: इनी टेंशन क्यों लेती हो ये?
1: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
0: आज सिमी पेंजी आई सी, उना ने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
1: अच्छा, असि भी उना नु कांटेक्ट कर दे फिर ता।
0: जेकर थानो भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433 8383 11 और विजिट uvfinancial.com.au।

0: ब्रोकर्स। अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: प्रीत की होया?
2: ओ इस बार फिर पीटी च बैंड नहीं आए, हुन फिर कोई वीजा नहीं पैना, लगदा इंडिया वापस जाना पैना।
0: जे तुसी भी इना दिवांग थक चुके हो ता हुणे कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले दिसाया माइग्रेशन वालेयां नूं। इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी, स्टूडेंट वीजा, TR, पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज। नंबर लिखो 0451-1100, 0451-1100। Desire migration. जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton। मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au। प्रीत की होया?
1: ओ इस बार फिर पीटी च बैंड नहीं आए, हुन फिर कोई वीजा नहीं पैना, लगदा इंडिया वापस जाना पैना।
0: जे तुसी भी इना देवां थक चुके हो ता हुने कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वाले नु। इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी, स्टूडेंट वीजा, TR, पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज। नंबर लिखो 0451-1100 0451-111-100। डिजायर माइग्रेशन। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058600 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: क्रिएटिव इवेंट्स लेके आ रहे ने साल दी सब तो इंतजार कीती गई संगीतमय शाम हेरिटेज टूर 2026 डॉक्टर सतेंद्र सरताज
3: होलावा इश्क दे अंबरी उड़ारियां मैनू प्यार दियां जड़ियां खुमारियां
2: 17 मई 2026 शाम 6 बजे मेलबर्न दी शान रोड लेवर अरेना विच स्पॉन्सरशिप दी इनफॉरमेशन लई कॉल करो 0426-809-499 फॉर टिकट्स विजिट tiktek.com.au
4: आ किथे वज गई तेरी गड्डी
5: गड्डी तां ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवें
4: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट फ्री लोन कार दी सर्विस मिलती है ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते सिंह स्मैश रिपेयर 8 ग्रेस वे रेवन हॉल
6: सोना चाहिदा
7: भरोसा चाहिदा
6: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042
8: जवाका दी एक्टिंग है कमाल पवेगा हुण धमाल
6: डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल हुण ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनालिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन
9: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट
10: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
9: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com
6: की होया इन टेंशन क्यों लेती हुई है
11: यार की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया
6: आज सिम्मी पहन जी आए सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता
11: अच्छा असि भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता
6: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0403-8833-11 और विजिट uvfinancial.com.au
12: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 0390-8665 और विजिट tireforce.com.au
6: Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपने दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 0433-280-252

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।
1: अज दा विचार, अज दी कहानी, हर रोज तुसी सुनदे हो शो हांजी मेलबर्न विच। तुहाडी डिमांड उत्ते आओ एक बार फिर सुनदे हां इस हफ्ते दी एक बेहतरीन कहानी।
2: रेडियो हांजी 1674 समा चुका अज दी कहानी दा। कहानी है 2013 दी। एक बेकार व्यक्ति, एक होमलैस, जद को रहन दे लई छत भी नहीं सी, गलियां दे विच सौंदा, उत्थों ही मंग के अपना खाण पीण दा गुजारा कर लैंदा। 55 साल दी उम्र, नां सी बिली रे हैरिस। कंसास दी एक गली दी नुक्कर दे विच बैठ के हाथ दे विच एक कप फड़ी रखदा ते जिहड़ा भी कोई लंघदा उहदे कोलों कोई तेली चवानी दी मंग करदा ता कि अज मेरे रहन दा गुजारा हो जाए, अज मेरे खाण पीण दा कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाए। बहुत वड्डियां इहदे मुताबिक इहदियां आसां उम्मीदां नहीं सी, सिर्फ उस दिन का गुजारा हो जाए, अगले दिन फिर दोबारा फिर कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जूगा। इस तरह के नाल दिन गुजर रहे कि अचानक एक दिन एक लड़की आके इहदे कप दे विच आस तों कुछ वधेरे पैसे पाउंदी। वेख के हैरान होया कि तू मैनू इन्ने पैसे क्यों दे रही है। तो उस लड़की ने कहा, मैं ये सिखिया कि जदों तुसी चंगा किसी का कर दो तो तुहाडे नाल चंगा हुंदा, इस करके मैं तुहानू वध पैसे दे रही हूँ, मैनू लगता तुसी लोड़वंद हो। बिली ने धन्नवाद किया ते कहा, तेरा शुक्रिया, अज मैनू सड़क ते नहीं सौना पऊगा। धन्नवाद लैके ये लड़की जिहदा नां सहरा सी उस जगह तो एक मुस्कुराहट वंडदी हुई चली गई। उहदे जाण तो बाद बिली ने जदों अपना कप चैक किया ये वेखण दे लई कि हुण उहदे कोल किन्ने क पैसे हो गए ने, अचानक ध्यान एक मुंदरी दे उत्ते पैंदा ते बिली नूं एकदम समझ आ गई कि उसे लड़की दी रिंग है जिहड़ी मैनूं पैसे दे के गई सी। इधर उधर वेखण दी लभण दी कोशिश कीती पर उस समय उस लड़की नूं ना लभ पाया। सोचा कि दुकान दे उत्ते जाके इहनूं वेच देना, मन दे विच शायद एक वारी ते जरूर खोट आई। दुकान दे उत्ते पहुंच गया, जाके पुछया तां दुकानदार ने कहा कि काफ़ी महंगी रिंग है, इहदे तैनू काफ़ी सारे पैसे मिल सकते ने। $4,000 की यह रिंग जिहदे नाल उहदे काफ़ी मसले हल हो सकते। $4,000 दे उत्ते सहमति हो गई पर अचानक जदों दुकानदार पैसे देन लगा तां मन दे विच पता नहीं क्यों फिर विचार आया, चंगा करोगे तो चंगा होएगा, यह उस लड़की ने कहा सी, जां फिर इदां कह लो कि उहदे चंगेपन ने बिल्ली नूं यह करन नहीं दिता। रिंग लैके वापस आया तो उहनूं लभणा शुरू कर दिता। कोई पक्का टिकाणा पता नहीं सी, आस पास हर एक उस दफ्तर दे विच गया जिथे उहनूं लगदा सी कि शायद यह लड़की काम करदी होएगी। काफ़ी समा लभण तो बाद भी कित को खास कामयाबी हाथ ना लगी पर आखिरकार एक ऑफिस के पहुंचया, जाके पुछया कि इस नाँ की लड़की थोड़े इतने काम करती है। तो उस लड़की मिलने तो बाद जदों रिंग उहदे हाथ दे विच दित्ती तो लड़की ने बहुत इमोशनल होकर कहा कि तुसी वाकई मेरी ये रिंग वापस करन आए हो, ये मेरी एंगेजमेंट की रिंग है, ये मेरी मंगनी की मुंदरी है जिहड़ी मैं मन चुकी ही कि शायद हुण मैनूं नहीं मिलूगी, मैं तुहानूं दस नहीं सकती मैं किन्नी खुश हाँ, तो मैं आस रखदी हाँ कि तुहानूं पता होएगा ये काफ़ी महंगी सी, जे तुसीं वेच देंदे तो तुहाडियां काफ़ी मुश्किलां हल हो जांदियां। हालांकि बिली ने बाद विच कहिंदे ने कि ये मन्निया कि एक बारी तो मन दे विच जरूर खोट आई सी। इस लड़की सायरा ने जाके अपने मंगेतर दे नाल गल की, दोवां नूं बहुत वधिया लग्या, दोवां नूं इहदी उदारता बहुत चंगी लगी, तो दोवां ने ऑनलाइन एक फंड चलाया, डोनेशन इकट्ठी की। पैसे रखे तो थोड़े सी पर लोगों के वलों दुनिया भर के यहोजा रिस्पोंस आया कि 1,90,000 डॉलर इकट्ठे हुए, जिदे नाल के बाद विच बिली ने घर भी ले लिया, उन्हों सड़कां दे उत्ते भी नहीं सौना पिया, हुण उह अपने बाकी परिवार नूं भी नाल लै आया। तो जदों ये कहानी घड़ी गई, जदों ये आर्टिकल छपे, उस समय तक कहा जाता है कि हाले भी वह हफ्ते दो हफ्ते आपस दे विच जरूर मिलते हैं, जानी कि उन्हां दी सांझ हुण पक्की पै चुकी है। बिली ते सारा दे परिवार की सांझ एक ऐसी सांझ पै चुकी है जिदियां मिसालां शायद जग दे उत्ते बहुत घट मिलदियां ने। ते ये वो कहानियां जिदे करके आपां कह सकदे हां कि जे तुसी चंगा कर दिओ ते तुहाडे नाल चंगा जरूर हुंदा। ये छोटियां छोटियां कहानियां जिहड़ियां किसे फिल्म तो घट नहीं पर इस जग दे उत्ते जरूर वापरदियां रहिंदियां ने। इस करके अपना तुसी चंगा करना ना छड़ो, ते तुहाडे नाल चंगा होणों भी कोई नहीं रोक सकता। हमेशा मन दे विच रखो कि आपां किसे दा चंगा करना, चंगा करना, चंगा करना, क्योंकि ये मौका तुहानूं वार वार नहीं मिलता, ते जदों मिलता उदों तुहानूं पल छिण दे विच ही इहनूं अवेल करना पैंदा। एक ऐसा चैक है, जे तुसी नाल दी नाल किते कैश करा लिया करा लिया, जे नहीं तो फिर सारी उम्र कदे सोचते ही रह जाओगे कि मैनू भी मौका मिलिया सी, मैं भी चाहुंदा जां मैं भी चाहुंदी, तो मैं भी किसी कहानी की, मैं भी दुनिया के लिए किसी एग्जाम्पल की जां एग्जाम्पल का पात्र बन सकता है। जो इस करके कहिंदे ने कि अपने आप नूं एक कमांड हमेशा दे के रखो, मैं चंगा करना, मैं किसी का भला करना, ताकि जो मौका आए तो फिर उस समय तुहानूं बहुते सोच विचारां दी लोड़ ना पवे। आस करते हैं कि अज की कहानी तुसी पसंद की होगी।
1: ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ, ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ।
0: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road te tuhanu udik reha hai. Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest te Sadabahar Mustang, brand new demo te quality pre-owned vehicles, trade-in ate finance options be available. Aao te apni navi Ford da test drive karo. Business fleet lai gal karo. Vehicle experts Tim Forbes ya Corey Nal. Radio Hanji de hawale nal pao 3 saal di free service. Chadston Ford, ready, set.
3: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। प्रीत, की होया?
4: ओ इस बार फेर पीटी च बैंड नहीं आए, हुन फेर कोई वीजा नहीं पैना, लगदा इंडिया वापस जाना पैना।
0: जे तुसी भी इना दिवांग थक चुके हो ता हुने कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वाले नु। इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी, स्टूडेंट वीजा, TR, पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज। नंबर लिखो 045-151-1100 045-151-1100 Desire Migration।
5: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है, और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
3: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
6: मेलबर्न दे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स दे ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वेनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल वी कर दे हां। कॉन्टैक्ट 04231029000, ईमेल sales@ozlintels.au।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: सोना चाहिदा
3: भरोसा चाहिदा
2: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042
4: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
6: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
5: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
6: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
7: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा
8: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है थैंक यू एदे बारे दसन लई
9: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492
10: आ किथे वज गई तेरी गड्डी
11: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें
10: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है
12: सिंह स्मैश रिपेयर वालिया ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम अते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-7748 ते सिंह स्मैश Repair. It Grace Way, Revan Hall.

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
4: बलजीत, ब्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
5: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
4: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडी नॉग। फॉर मोर इनफो कॉल 0499 2535 45।

0: वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
1: या 90-77-97-33
0: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733।
0: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
1: हर कदम तुहाडे नाल।
2: सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
4: बलजीत, व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
5: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
4: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
6: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
7: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
6: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
8: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
9: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
8: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
10: क्रिएटिव इवेंट्स लेके आ रहे ने साल दी सब तो इंतजार कीती गई संगीतमय शाम, हेरिटेज टूर 2026, डॉक्टर सतेंद्र सरताज।
11: ओलावा इश्क दे अंबरी उड़ानिया, मैनू प्यार दिया चढ़िया खुमारिया।
10: 17 मई 2026 शाम 6 बजे मेलबर्न दी शान रोड लेवर अरेना विच। स्पॉन्सरशिप दी इन्फॉर्मेशन लई कॉल करो 0426-809-499। फॉर टिकट्स विजिट tiktok.com.au।
12: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक देखण जरूर आयो।
13: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
14: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
15: की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है?
16: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
15: आज सिम्मी पैन जी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
16: अच्छा, असि भी उन्होंने कॉन्टेक्ट कर दे फिर ता।
15: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कॉन्टेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0430-8833-11 और विजिट uvfinancial.com.au।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: JBCO Films लेके आए ने एक्शन इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट पंजाबी फीचर फिल्म शेरा।
2: 5 साल बाद मुड़िया शेरे ते मुड़िया भी केड़े हालत ने।
3: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
4: मैं उत्थों भी मुड़ के हूँ जत्थों कोई नहीं मुड़ के हूँ।
1: Written and directed by Savio Sandhu. Produced by Anmol Sahni.
3: उन देखना ना भूलियो 15 मई तो हड्डे नेड़ले सिनेमा घर विच।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: हां जी रेडियो।
3: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे।
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 ते 04332802522
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं ये है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालिया दा।
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 04066609609 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: Locals. अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: हाँ जी हाँ जी
2: मेरे दिल विच किसे होर दी थां नहीं बची, तेनू अपना जो कह बैठे तां नहीं बची, तेरे हाथ विच डोर है मेरे सावां दी, तेरी तो पिछ लोड़ नहीं मैनू छावां दी, सरगी दा तारा है नी अज मैनू मिल के गया, कहिंदा मिलना दोबारा है, कहिंदा मिलना दोबारा है।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर

0: 4596 garivalvisasolutions.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
1: हाँ जी हाँ जी।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसे, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट गोल्ड लीफ डेयरी .com।

गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हासो कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार बती माई। जे हो जाना आखा नाई, कहना कथन न जाई, गुरा एक दे बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावा जित सपावा, बिन पाने के नाय करी। जेती सृष्ट उफाई वेखा, बिन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होए। नवाख नाम विच जानिए, नाल चले सब कोए। चंगा नाव रहाए कै, जस कीरत जगले। जे तिस नदर न आवे, ता वात न पुछै के। कीटा अंदर कीट कर, दोसी दोस तरै। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। ते हा कोई न सुजे, जे तिस गुण कोई करे। सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनै तर तवल आकाश। सुनै दीप लोप पाताल, सुनै पो न सकै काल। नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास। सुनै ईसर ब्रह्मा इंद, सुनै मुख सलाहन मंद। सुनै जोग जुगत तन भेद, सुनै शास्त सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास। सुनै सत संतोख ज्ञान, सुनै अठ सठ का इस

विचार करते कै करना नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया दिन सूत। जे को बुझै होवै सच्यार तौलै उपर केता पार। धरती होर परै होर तिस्ते पार तलै कमन जोर। जी जात रंगा के नाव समना लिखिया बुढ़ी कलाम। ए लेखा लिख जाने कोय लेखा लिखिया केता होय। केता तान स्वाल्यो रूप।

एक बार जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाक खाए।

जो तुद पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी साला।

रूप न कथने जाए, ना ओ मरै ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथे भगत वसै के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर भंड, जे को कथै

अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान बाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान बाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ती प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रवाने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण गुगुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वमुख प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिरद करदा अधो उर्द अर्दंग अगा उग हरता परंग परम परमेश्वरंग प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारंग अछेती अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्ततामंग तेरा जोर चातुरी छंद जलय हैं थलय हैं अभीत हैं अभय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अवेश हैं प्रियंग छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्तंग निनाथे नमस्तंग परमाथे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अकाले नमस्तंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्व दिशंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तात्र दिशा विशा हो फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान ताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेद हरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह देव तात मात न जात जाकर जन्म मर महीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्त्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकुदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक।

पुरख अवधूत गर्भगंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपे सर्व शास्त्र जानी जैन रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे उचित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अना

कालान कान अनुभूत अंग अभाव अंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछ्य कंस आदि श्री तरम सर्वां बरनांडिये अंडंड बांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभे जुभेश के आघा जिकर्म के आ

जगतं कृति है कि छत्रं छत्री है कि ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है कि आप अभेव है कि चक्रं बहीन है कि एक अधीन है कि रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है कि गैब गैब है कि अफल गुना है कि साहल सुना है कि कारण कुनंद है कि रोजी दहंद है कि राजग्रहीम है कि कर्मं करीम है कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहिब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सली खुदमदाम गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीज़ुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीज़ुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अदूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर गनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमित ओमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसन चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सकन है हिरासल फकन है कलंकम प्रनास है सुमस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है सुमस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकम प्रनास है बिस्तल निवास है के सर्वर गवन है के हमेशा रवन है तमाम तमीज है समस्त अधीश है परंग परंग ईस है समस्त अधीश है अदेसल अलेख है अभेसल अभेक है जमीन जुमा है अमी कुमा है करीमल कुमाल है के जुर जुमाल है के अचलंग प्रकाश है कृमित्व सुभाष है के अजब स्वरूप है।

गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड।

अंठन अबार आडीठ तरम अत टीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करनाले अर काले है कल खंडर है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्मनायक है सरूपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनाश अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तर प्रनासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निर्कामंग बभूते समस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा समस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबम सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते तो प्रसाद सोइए शराब समूह सिदान के देख फिरो करजोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधायक सन समूह अवनिवृति के सारी देश को देख रहे हो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन कुजात निवारे पारी पजान जात बिचारे इते पै तो कांपे अंत को नागे पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है राज हजारे ओत पवेख पवान के पुवत कौन गने नी जात विचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जतार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जान

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जमन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, सेवकन को सेवगुन सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचान, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर्ष करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरे निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महामूड किच पेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, निरंकार कर चिंत नहीं पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी, कहो फूर राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख्त है मरे, पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

0: तिनका शब्द सचै सवारिया। कह नानक ए आनंद है आनंद गुर ते जानिया।
1: बाबा जिस तू दे सोई जन पावे, पावे तो सो जन दे जिसनू।

माता भाग भरी जी तिना दे सपुत्री माता तमोतरी जी दे नाल पहला आनंद कार्ज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का सतगुरु पंचम पातशाह ने किया। एक रात सुल्तानपुर लोधी की धरती ते भी रहे सी जिथे गुरुद्वारा श्री सेहरा साहब है जिहदा पुरातन पहला नाम धर्मशाला सी। सो गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह ने ऐसे पर उपकार करदे होए आ ते 1663 बिक्रमी संमत ते 1606 ईस्वी सन नू जेठ सुदी 4 दो हड़ वाले दिन गरीब नवाज साहब जी ने फिर लाहौर दे विच तत्ती लोह ते चौंकड़ा लाउंदे आ उबलदी देग विच बैठदे आ सीस ते तत्ता रेता पै रिहा जबर ते जुल्म दा मुकाबला सबर ते शांति दे नाल करदे आ और भाणा मन्नण दा उपदेश देंदे आ। रसना तो बचन फरमाए जा रहे सी तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै उलाहनो मैं काहू ना दियो मन मीठ तुहारो कियो। तो ऐसे बचन फरमाउंदे आ गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने शहादत प्राप्त कीते जिन्हां सतगुरां ने साध संगत जी ए बाणी दा जहाज तैयार कीता ते सब तो वध बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर बाणी के बोहित पंचम पातशाह धन श्री गुरु अर्जुन देव साहिब महाराज जी दी है। आप जी ने 30 रागां विच बाणी उचारण कीती है। जेड़े गुरु के सिख अमृत बाणी दा श्री सहज पाठ करदे हन ओह भली प्रकार जाणदे पहले पातशाह महाराज साहिब जी दी अमृत बाणी जो रागां च आउंदी है उन्नियां रागां विच है। दूसरे पातशाह श्री गुरु अंगद देव साहिब महाराज जी दी अमृत बाणी 22 वारां दे विचों 9 वारां विच आउंदी है गिणती दे 63 श्लोक हन। तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास साहिब महाराज दी बाणी 17 रागां विच है। चौथे पातशाह महाराज दी ते पंजवें पातशाह सतगुरां दी बाणी दोवां गुरु साहिबां दी बाणी 30-30 रागां दे विच है। श्री राग तो लैके प्रभाती तक 30 राग रागणियां बनते हैं। तो सत संगत जी सतगुरु नामे पातशाह की बाणी गरीब नवाज साहब जी ने 15 रागां विच बाणी उचारण की है। तो ऐसे गरीब नवाज धन श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज जिन्हां दी बाबत भट्ट साहबाना ने आख्या धरन गगन नव खंड मह जोत स्वै रूपी रहे हो भार भन मथुरा कछ भेद नहीं गोरे अर्जुन प्रतख हार। प्रतख हरी दा स्वरूप सतगुरु सूही राग दे अंदर गरीब नवाज कृपा करदे हन। 15वां स्थान है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर सूही राग दा और गरीब नवाज सतगुरु पंचम पातशाह महाराज

अचुत ए भी परमेश्वर दा नाम है। इस शब्द विच नाम ही आए आ सारे वाहिगुरु जी दे। अचुत उसनु तां आखिया है भी वह अपनी पदवी ते सदा सलामत रहण वाला है, कदी भी अपनी पदवी तो डिगदा नहीं है। दुनिया दियां पदवियां बदलदियां रहिंदियां हन पर परमेश्वर की पदवी कदी भी बदलती नहीं है, क्योंकि उन्हें पदवी किसी ने दिती नहीं। जिसनु कोई पदवी दवे उहदी पदवी कोई खो भी लैंदा है। इस करके आपां जपजी साहिब जी भी पढ़ते ना, थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए। सारे संसार नू पदवियां देण वाला परमेश्वर है पर उसनु किसे ने परमेश्वर की पदवी नहीं दिती है। इस करके वह अचुत है अगेड़ है, अपनी पदवी ते सदा सलामत है। तू सदा सलामत निरंकार, ओदी पदवी कदे भी बदलती नहीं। वह अपनी पदवी तो कदी भी डिगदा नहीं है। ओनू नहीं यह खतरा भी मेरी पदवी ते कोई दूसरा आके परमेश्वर बैठ जाएगा, नहीं वह इको एक ही है। ता ही आरंभ च आख्या एक ओंकार, ओदे वर्गा दूजा कोई है नहीं है। उसके नाम अनेकां, ओदे रूप अनंत गुण बेअंता, पर हस्ती ओदी एक ही है। ऐसा वह परमेश्वर अचुत है। पार ब्रह्म जिहदा पारावार ना पाया जा सके, ब्रह्म शुद्ध स्वरूप व्यापक स्वरूप है ते जिसनू पाप ते पुन नहीं लगता, इस करके ओनू पार ब्रह्म आख्या है। संसार दे जीवां नू पाप भी लगता है ते पुन भी लगता है, पर परमेश्वर नू पाप पुन नहीं लगता। वो सारी सृष्टि नू पैदा करता है, सारिआं नू रोजी रोटी देंदा पालदा, ओनू पुन नहीं लगता ते सारिआं नू मारदा भी ओनू पाप नहीं लगता। यह नहीं भी सारिआं नू मार के पापी हो जांदा होवेगा, ओह नहीं पापी पुन्नी। इस करके वह पार ब्रह्म है और परमेश्वर परम ईश्वर है, सब तो वड्डा ईश्वर अंतरजामी ते अंदर दी जानण वाला है। ओनू दसना भी नहीं पैंदा, बिन बकने बिन कहन कहावन अंतरजामी जानै, बिन बोलिया सब किस जानदा किसी आग्या।

0: रामचंद्र रूप भी तुसी धारण किया ते आप जी का जे वास्तव विच स्वरूप वेखिए रूप ना रेखिया ते आप जी का ना कोई रूप है ते ना कोई रेखा है।
1: बनवाले चक्कर पाण दर्श अनुपिया
0: सार बाग दे वाली हो सुदर्शन चक्कर अपने हाथ विच रखण वाले हो आप जी का दर्शन बेअंत उपमा वाला है।
1: सहस नेत्र मूरत है सहसा
0: आप जी दे हजारा ही नेत्र ते हजारा ही आप जी दे मूरत स्वरूप हन।
1: एक दाता सब है मंगा
0: इको एक तुसी दाते हो बाकी सारी सृष्टि आप जी दे दर दी मंगती है। सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई दत्ता दाता एक है सब को देवन हार।
1: भगत वशल अनाथ है नाथे
0: भगतां नाल प्यार करन वाले भगत वशल हो अनाथां दे नाथे स्वामी मालक हो।
1: गोपी नाथ सगल है साथे
0: गोपियां दे भी नाथ स्वामी तुसी हो सारी सृष्टि गोपी रूप है तुसी सारी सृष्टि दे नाथ मालक हो ते सारियां दे साथ हो।
1: वासुदेव निरंजन दाते
0: और वासुदेव सारियां विच वसे होए देव प्रकाश रूप और निरंजन माया मैल तो रहत ते सारियां दातां देण वाले हो।
1: वर्ण न साका गुण अंगा
0: आप जी दे अंगा स्वरूप दे आप जी दे अंगा दे गुण नहीं वर्णन कीते जा सकते।
1: मुकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण
0: तुसी मुक्ति दाते हो मोह नु कटन वाले हो मन नु हर लेन वाले हो और लक्ष्मी दे नारायण पति खवाउंदे हो।
1: द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण
0: द्रौपदी दी भी रखिया आप जी ने कीती है जिस वेले दुर्योधन ते दुशासन बेपर्द करना चाहुंदे सी ना लज्जा निवृत करना चाहुंदे सी द्रौपदी दी

0: लक्ष्मी दे कंत पति रूप हो करके आप कंतूहल कौत कर दे हो।
1: आनंद बिनोदी नेह संगा
0: आनंद दायक बिनोदी कौतका वाले हो और नेह संगा सो आप निर्लेप हो किसे दे नाल नहीं हो किते मारे कहिंदे तो सारिया दे नाल है ते किते सतगुरु कहिंदे तू वखरा है सर्ब निवासी सदा अलेपा ऐसा आप जी दा स्वरूप है।
1: अमोघ दर्शन आजूनी संपा
0: आप जी दा दर्शन सफला है आप जूनिया तो रहत और सब

0: मूर्त है हस्ती है वो समय तो रहत है, काल तो रहत, मौत तो रहत, कलंका तो रहत, अज्ञान तो रहत है। अकाल मूर्त जिस कदे ना ही खाओ, जिस आप जी नू कदे भी खाओ कोई खौफ नहीं है, ते जिस आप जी दा कदे भी खाओ नास नहीं हुंदा है, खै नहीं हुंदे हो।
1: अविनाशी अभगत अगोचर
0: तो रह तो आप जी दी प्राप्ति कठिन है और इंद्रिया दी पकड़ तो परे हो।
1: सब किश तुझ ही है लगा,
0: सारा कुछ आप जी दे वेच ही लगा होया है, सारी संसाए सृष्टि आप जी दे वेच ही लीन है।
1: श्री रंग बैकुंठ के वासी,
0: लक्ष्मी भी रंग आनंद देन वाले हो ते बैकुंठ दे आप वासी हो, सत संगत रूपी बैकुंठ विच वसदे हो।
1: माशा काश कोरमा आग्या आओ त्रासी,
0: आप जी दी आग्या दे विच ही सो माश और काश अवतार सो आओ त्रासी विशेष करके उतरे हन, आप जी दी आग्या विच ही अवतारे होए आ। माश काश हो ब्राह जमना के कूल खेल खेलियो जिन गिंद जीओ, इसे प्रकार कूरम सो आप जी दी सेजा दे थले जेड़ा कशुकुमा है और बाशक नाग ए भी आगे आप जी दी आग्या दे विच उतरे हुए हन।
1: केशव चलत करह निराले,
0: केशव आप जी नूं तां कहिंदे तुसीं सोहणे केसां वाले हो, लम्मे लम्मे केस आप जी दे, तां सानूं भी मारे ने आख्या कि तुसीं भी भाई साबत सूरत हो केसा धारी होवो। केशव परमेश्वर वाहिगुरु केसा धारी, चलत करह निराले बड़े निराले कौत करदा है।
1: कीता लोड़ है सो होएगा,
0: ए प्रभु जो तुसी कीता लोड़दे हो ना करना चाहुंदे हो ओहो ही कुछ होएगा, पिछे जो चाहुंदे सी हुंदा सी हुण ओहो हो रिहा है, अगे भी ओ कुछ होवेगा जो तुसी करना है।
1: निराहारी निर्वैर समाया,
0: आहार तो रहत हो वैर तो रहत हो सारे समाये हुए हो।
1: तार खेल चतर पुज कहाया,
0: आप जी ने संसार दी खेल धारण करके पैदा करके ते चतुर्भुजी रूप भी आप ही कहाउणा कीता है।
1: सावल सुंदर रूप बनावा है,
0: तुसी सावला ते बड़ा सोहना रूप बना लैंदे हो।
1: बीन सुनत सब मोहगा,
0: किते बंसरी वजाउंदे हो ते आप जी दी बंसरी सुन के सारे मोहत हो जांदे हन।
1: बन माला विभूखन कमल नैन,
0: बजंती माला आप जी ने धारण कीती होई है, जंगल दे फुलां दी माला धारण कीती होई है, विभूखण गहने ते कमल फुल वर्गे आप जी दे नेत्र हन।
1: सुंदर कुंडल मुकट बैन,
0: सोहणे कुंडला वाले ते मुकट ते सोहणे बचन हन आप जी दे।
1: शंख चक्र गदा है तारी,
0: आप जी किसे मौके ते शंख भी धारण कर लैंदे हो अपने हाथ विच, सुदर्शन चक्र भी ते गदा भी धारण कर लैंदे हो।
1: महासारथी सत संगा,
0: रथ चलाउण वाले महान सारथी भी बन जांदे हो, आप जी दा ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप है और सत संग

0: गोपियां रूप होए हो, आप ही कान्हा कृष्ण रूप होए हो।
1: आपे गौ चरावे बाना,
0: ते आप ही तुसी जंगल दे विच बिंद्रावन विच गावां नूं चराउण वाले हो।
1: आप उपावे है, आप खपावे है।
0: आप ही तुसी इसे प्रकार इंद्रियां रूपी गोपियां ते चेतन सत्ता रूपी कान हो रहे हो। आप इंद्रियां रूपी गावां नूं चराउण वाले हो रहे हो। आप ही पैदा कर दे ते आप ही नाश कर दे हो।
1: तुद लेप नहीं एक तिल रंगा,
0: असे सारे चोज कौत कर दिया हैं। एक तिल जिन्ना भी आप जी नूं ए संसार दे रंगा दा लेप नहीं लगदा, तुसी निर्लेप हो।
1: एक जीह गुण कवन बखाना,
0: हे प्रभु साडी एक जीह बाप जी दे केड़े केड़े गुणा दा कथन करे।
1: सहस फनी सेख अंत ना जाना,
0: तुसी हजारा मुंह दिते शेष नाग नूं ते हजारा फणा वाला शेष नाग, 2000 जीभां उस दियां, रोज नित नवे नाम।

नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। दिन का आरंभ भगवान के नाम रूप गुण लीला या हमारे शास्त्रों के दर्शन आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। मुझे पता है आज की भागती दौड़ती लाइफस्टाइल में किसके पास कितना टाइम है अपने लिए। हम भाग रहे हैं तो बस दूसरों के लिए, वो चाहे अपने परिवार वाले हों, संगे संबंधी हों या दुनिया वाले। स्वयं के लिए तो हम कुछ भी कर ही नहीं पा रहे। मित्रों, आज की दुनिया में हर इंसान भाग रहा है, कोई करियर के पीछे, कोई पैसा कमाने के पीछे, कोई नाम और सफलता के पीछे। किंतु इस भाग दौड़ में सबसे ज्यादा अगर कुछ खो रहा है तो वो है मन की शांति। क्यों नहीं मिल रही शांति, या कहां मिलेगी ये मन की शांति? चलिए मिलकर खोजते हैं छोटे से अंतराल के बाद। सुनते रहिए पुण्य दर्शन।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपका दास। तो हम ढूंढ रहे हैं शांति, मन की शांति। आपके शहर जैसे एक बड़े शहर में एक व्यक्ति रहता था, करण। करण की सैलरी लाखों में थी, बड़ी कार, बड़ा फ्लैट, ब्रांडेड क्लोथ्स, सब कुछ था। बाहर से देखने वाले लोग कहते थे क्या लाइफ है करण की, किंतु सच्चाई कुछ और ही थी। करण के पास सब कुछ था, किंतु समय नहीं था। रात को देर तक ऑफिस वर्क चलता, डिनर करते समय भी लैपटॉप खुला रहता। वोकेशन पर फैमिली के साथ जाते तो जरूर, लेकिन फोन पर लगातार मीटिंग्स, डील्स चलती रहती। शरीर घर में होता, किंतु मन ऑफिस में। धीरे धीरे उनका छोटा बेटा उनसे दूर होने लगा। एक दिन करण ने नोटिस किया कि उनका 6 साल का बेटा उनसे खुलकर बात नहीं कर रहा। वो उसे कटा कटा सा महसूस करने लगा। उसे ऐसा फील होता जैसे वो अपने ही घर में गेस्ट हो। ऐसा ही होता है जब हम किसी अपने को, अपने रिश्ते को टाइम नहीं दे पाते, तो वो रिश्ता टाइम पर हमारा साथ नहीं देता, दूर हो जाता है। तो क्या इसका हल करण के साथ आपको भी बताऊं? बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया, आप जुड़े रहिए पुण्य दर्शन के साथ।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो हमारे करण अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। एक रात वो अपने ऑफिस से लेट निकले तो ऑफिस के बाहर ही एक चाय का खोखा था जो बंद हो चुका था, लेकिन खोखे का मालिक जोर जोर से हंसते खेलते अपने परिवार के साथ समय बिता रहा था। छोटे से ठेले पर चाय बेचने वाला वो आदमी शायद पैसे में करण से बहुत छोटा था, किंतु खुशी में बहुत बड़ा। करण सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? और जिसके पास इतना कम है वो इतना शांत कैसे है? वो हिम्मत कर उस चाय वाले के पास गया। चाय वाले ने हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी अभी तो दुकान बंद कर दी है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? उसने बोला, भैया अपनी खुशी का राज मुझे बता दो, मैं भी ये पल जीना चाहता हूं। चाय वाले ने बोला, बाबूजी आप तो बड़े लोग हैं, बड़ा काम करते हैं, मैं सिर्फ अपने गुजारे लायक काम करता हूं। जितना मेरा परिवार और मेरा पेट पल जाए उतना कमाता हूं, फिर काम काज बंद कर अपने परिवार के साथ समय देता हूं। करण समझ गया। और जो करण का प्रश्न है आज लाखों लोगों के मन में भी है। हमने सुविधाएं तो बहुत बढ़ा ली हैं, लेकिन शांति खो दी है। कमाई बढ़ गई है किंतु मुस्कान कम हो गई है। घर बड़े हो गए हैं, चाय वाला अपने पेट के लिए दिन भर कमाता है और रात को जितना मिलता उसमें संतुष्ट होकर आनंद से सो जाता। धीरे धीरे करण को समझ आ गया कि पैसा जरूरी है, किंतु अगर उसकी कीमत हमारी इनर पीस हो, परिवार हो, नींद हो, भगवान से संबंध हो, तो वो सौदा बहुत महंगा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान को सभी लोकों का स्वामी और सभी जीवों का सच्चा हितेशी समझता है वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। मित्रों, असली शांति तब आती है जब हम यह स्वीकार करना सीखते हैं कि हमारा जीवन का कंट्रोल केवल हमारे हाथ में नहीं, उस परमात्मा के हाथ में है। जब इंसान भगवान पर विश्वास करना सीखता है तभी उसके मन का बोझ हल्का होने लगता है। तो आज थोड़ा समय निकालिए, अपने परिवार के लिए निकालिए, भगवान को याद करने के लिए भी निकालिए, क्योंकि जीवन केवल कमाने के लिए नहीं बल्कि शांति और आनंद से जीने के लिए मिली है। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से। मंजिल

0: इंश्योरेंस ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस शर्त लागू
1: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 03908-6655 और विजिट fireforce.com.au
0: मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल टी बार्स इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां कांटेक्ट 0423-102-900 ईमेल sales@ozlintels.au Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 04332802522
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नु उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते ले सकदे हो आओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच
0: प्रीत की होया
2: ओ इस बार फेर पीटी च बैंड नहीं आए हुन फेर कोई वीजा नहीं पैना लगदा इंडिया वापस जाना पैना
0: जे तुसी भी इना देवां थक चुके हो ता हुणे कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वाले नु इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा परमानेंट रेजिडेंसी स्टूडेंट वीजा टीआर पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज नंबर लिखो 045-151-1100 0451-111-00 Desire Migration
3: Wow, teri sabji di khushbu ate taste vich kuch ta kamal hai Mainu vi dass de secret
4: Amrit, eh kamal hai Gold Leaf Dairy de Pure New Zealand tea da New Zealand vich free range grass fed gawan de dudh to taiyar Na ta is vich oil, na hi koi color, hormones ya antibiotics Bilkul pure hai ki plastic de dabbyan ch nahi Balki glass container ch pack hunda hai
3: tusi vi aaj hi buy karo Gold Leaf da Pure New Zealand tea Apne nede de Indian grocery store to visit goldleafdairy.com

0: दिन है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
1: हमारे समाज में टीचर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे कई लोगों को प्रेरित प्रोत्साहित करते हैं और उनके जीवन में वास्तविक प्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ विक्टोरिया में विभिन्न पृष्ठभूमियों से संबंधित टीचरों का होना महत्वपूर्ण है और इससे विद्यार्थियों की शिक्षा में लाभ मिल सकता है। यदि आप या आपका कोई जानकार यहाँ विक्टोरिया में टीचर बनना चाहता है तो कई प्रकार के टीचिंग कोर्स उपलब्ध हैं। आप स्कॉलरशिप के लिए भी पात्र हो सकते हैं ताकि आपको हाई स्कूल टीचर बनने में सहायता मिल सके, टीचिंग में करियर बनाएं। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी का पता लगाने के लिए टीच द फ्यूचर सर्च करें। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा प्राधिकृत।
2: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
3: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।

0: ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੋਇਆ?
1: ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੀਟੀ ਚ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ।
0: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਤਜੁਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, TR, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ 045-151-1100, 045-151-1100। Desire migration.
2: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
3: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
4: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
5: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
0: की होया? इनी टेंशन क्यों लेती हो ये?
6: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
0: आज सिमी पैन जी आई सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
6: अच्छा, असि भी उन्होंने कॉन्टेक्ट कर दे फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कॉन्टेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।